وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزال

0: कौन?
1: भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो शुमार में हजारों ही थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और मुसलमानों, अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। कौन है कि अल्लाह को कर्ज हसन ना दे कि वो उसके बदले उसको कई गुना ज्यादा देगा, और अल्लाह ही रोजी को तंग करता और वही उसे कुशादा करता है, और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे।

0: सी गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-96-8051।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: और मैं एमसी साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल आज भी कहा हूँ काम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो काम 80 साल का तबाह हो जाएगा और मैं आज भी समझता हूँ कि 80 साल के जो काम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर पैगाम चला सकता हूँ कौन सी काम कौन करते हैं। और उन्होंने FBI की तरफ बढ़ा दिया, आपने वॉर जीत ली, डिप्लोमेटिकली आपकी तरफ से किधर चले गए, इतनी सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज्यादा इस मुल्क को तेजी से आगे ले जाते। हुकूमत का मुस्तकिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे, इसके बाद 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये जो मर्जी कर रहे हैं बयान में से जो मर्जी निकाले सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल में नहीं आएगा, अपना टाइम पूरा करेंगे।
2: मौजूदा निज़ाम केॾां बि न पियो वञे, हुकूमत पंहिंजो आइनी मुदो पूरो कंदी ऐं शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहंदो। अजमेर इन ॻाल्हि ते क़ाइमु आहियां त निज़ाम बिल्कुल तबाह थी चुको आहे। माण्हुनि जी ख़्वाहिश आहे त वज़ीर आज़म ऐं मुंहिंजा लाॻापा ख़राब थी वञनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जूं इस्लामाबाद में साफ़िन सां ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी चयो त वज़ीर आज़म 14 खां 16 कलाक कम करे रहियो आहे, शहबाज शरीफ खे सिस्टम ठीक करणु मिले हा त मुल्क खे 100 भेरा तेज़ीअ सां अॻिते वठी वञे हा। वज़ीर आज़म खे मशवरो ॾिनो वेंदो त सभिनी वज़ीरनि जी कारकर्दगीअ जो जाइज़ो वरितो वञे, वज़ीरनि जी कारकर्दगी जो जाइज़ो काटरी धुर वठे ऐं पोए रिपोर्ट आवाम अॻियां रखी वञे। पाकिस्तान ऐं ईरान सरहदी वापार खे हथी ॾियण तोड़े 24 कलाक सरहद खुलियल रखण लाइ सहूलियतूं वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। बहितर लॉजिस्टिक ऐं कस्टम्स तरीक़े में बेहमांगी आणण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म सां ईरान जे वापार वारे वज़ीर सरबराही में 6 रुकनी वफ़्द जी मुलाक़ात। शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में अमुन लाइ पंहिंजियूं मुख़्तसाणियूं कोशिशूं जारी रखंदो। ईरानी सदर सां ताज़ो ई ख़िते में अमुन जे क़याम ऐं पाक ईरान लाॻापन ते सुठी ॻाल्हि ॿोल थी। पाकिस्तान पंहिंजे बहितरीन पाड़ेसरी ब्रादर मुल्क ईरान सां लाॻापन खे क़दुरु जी नज़र सां ॾिसे थो। उमीद आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान विच में $10 अरब जे ॿतरफ़े वापार जो हदफ़ हासिल कयो वेंदो। ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद पाकिस्तान जी सफ़ारती कोशिशनि जी वाखाण कंदे चयो त ईरान पाकिस्तान सां इक़्तिसादी ऐं वापारी लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण जो ख़्वाहिशमंद आहे।

0: It's 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Aashiq Honda Showroom Mehrapur, Atlas Honda Motorcycle Jupur Atmat, Aima Akhtar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur, jite nayi motorcycle ji sale. Company aje mukarrar kel rate de dastiyab ahe. Service Center, Atlas Honda Limited jo Warranty Claim Center. Service Area, jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi ahe. Honda Company aja tamam genuine spare parts, khususi riayat te maujood. Aashiq Honda Motors te pehje Honda Motorcycle ji tuning karayo. Computerized Japanese stitching machine je zariye jehme mile thi motorcycle ji karkardgi tamam better fuel adjustment rpm ji adjustment computerized Japanese machine zariye kai vanye thi Honda je qualified technician je zair nigrani Aashiq Honda Motors address Indus bypass Nast Railway Line Mehrapur Rabte Jilai Asim Hussain Arai 0307 3592120.
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मुअस्सर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में, डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601 00
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 03013992836
1: आई मोहम्मद उमर गोरी 03151557024
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: ईरान वडे हमले खां डिजी ॻाल्हियुनि लाइ मिंथू कयूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका ईरान ते वॾे फ़ौजी हमले जी तयारी करे चुको हो। दॿाउ सबब ईरान ॿीहर ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते अचण लाइ तयार थी वियो आहे। मां बि फ़ौजी कार्रवाई बदिरां सिफ़ारती हल खे तरजीह ॾींदो आहियां। मुआदे करणु पसंदि न कंदसि छाकाणि त माण्हुनि खे मारणु नथो चाहियां। ईरान खे एटमी हथियार रखण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। ईरान में हिकु धुर ॻाल्हियुनि ऐं ॿी जंग जारी रखण जी हामी आहे। अमेरिकी नायब सदर जी दावा जीडी वेंस चयो आहे त ॻाल्हियुनि ऐं छिकाण वारे अमल में सूरतयाल हेठि मथे थींदी रहंदी आहे। जेको बि थींदो अमेरिका आवाम जे हक़ में ई थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ अॼु ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो थींदो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म सऊदी वहद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात कंदो। मुलाक़ात में पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जे लाॻापन ऐं ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं थींदियूं। मौजूदा निज़ाम केॾांहुं बि न पियो वञे। हुकूमत पंहिंजो आइनी मुदो पूरो कंदी ऐं शहबाज शरीफ़ 5 साल वज़ीर आज़म रहंदो। अॼु बि इन ॻाल्हि ते क़ाइमु आहियां त निज़ाम बिल्कुलु तबाह थी चुको आहे। माण्हुनि जी ख़्वाहिश आहे त वज़ीर आज़म ऐं मुंहिंजा लाॻापा ख़राब थी वञनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो इस्लामाबाद में साफ़िनि सां ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी चयो आहे त वज़ीर आज़म 14 खां 16 कलाक कमु करे रहियो आहे। शहबाज शरीफ़ खे सिस्टम ठीकु मिले हा त मुल्क खे 100 भेरा तेज़ीअ सां अॻिते वठी वञे हा। वज़ीर आज़म खे मशवरो ॾिनो वेंदो त सभिनी वज़ीरनि जी कारकर्दगीअ जो जाइज़ो वरितो वञे। वज़ीरनि जी कारकर्दगी जो जाइज़ो कार्टरी धुर वठे ऐं पोइ रिपोर्ट अवाम अॻियां रखी वञे। काज़ी अहमद में पुलिस ऐं फोरन विच में मुक़ाबिलो। पुलिस अहलकार शहीद ऐं हिकु फोरन मारिजी वियो। पुलिस मौजूदु पुलिस ऐं फोरन विच में मुक़ाबले दौरान पुलिस अहलकार पीर मोहम्मद हुसैन खोसो शहीद थी वियो। ॾोहारी गुलाब शाह बि मारिजी वियो। दादू वेझो शाणी बिरादरी में जहिड़े दौरान क़तल थियल 3 ॼणनि जे हथियारनि जे पहिरे में तदफ़ीन। मुज़फ़र रब नवाज़ ऐं ख़ादिम शाणीअ जी तदफ़ीन कई वई। जहिड़ींदड़ धुरियुनि जा ॻोठ वेझो वण सबबि ॿीहर जहिड़े जो इम्कान। वाके बाद मुख्य जवाबदार सदाम शाणी ऐं ॿिया घर खाली करे फरार थी विया। पुलिस जवाबदारनि जा घर ढाहिण जो कमु शुरू करे छॾियो। सिंध हाईकोर्ट जवा थियल 4 वरनि जी ॿालीअ खे 12 अगस्त ताईं बाज़ियाब कराइण जो हुकुम थियो त 4 साल अॻु मुड़ुसु सरदार अली खां खुलाउ वरिती हुई। अॻूणे मुड़ुसु ऐं संदसि माइट धीअ सूदो अॻवा कयो हो। पुलिस मूंखे बाज़ियाब करायो पर न्याणी अञा ताईं न मिली आहे। अदालत SSP मलीर खे 6 ॾींहनि अंदरि ॿालीअ खे बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾिनो। ऐं अमेरिकी सदर जो डेमोक्रेटिक अॻवान अब्दुल सईद ते यहूदीन ऐं इसराइल सां नफ़रत जो इल्ज़ाम। परॾेही मीडिया मूजिबि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त सेनेट जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी फतेह अब्दुल सईद नफ़रत सां भरियल आहे। हू यहूदीन ऐं इसराइल सां नफ़रत कंदो आहे। मीडिया रिपोर्ट सां अमेरिका में इसराइल नवाज़ तंजीम डॉक्टर डेमोक्रेटिक प्राइमरी खे हाराइण लाइ $32 मिलियन ख़र्च कया हुआ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़।

0: आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
1: हाँ ये चो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम, होंडा मोटर्स एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: अपना शहर पुर की 90।

फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। Assalamualaikum. You are tuning into Radio FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं RJ रुखसार, सिंध की आवाज। अभी ये कैसे हैं आप? आई होप सो कि जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम। आपका मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे।

सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:25 जो कि पाकिस्तान का हमारी वक्त है और तमाम तो लोग ही घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हाँ वो सेफ सेफ जर्नी। बेटर लेट देन एवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत है मौजूद और तवक्कुल के लिए खुदा खैरियत है मतलब मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परिस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम, अहलन वसहलन, मरहबा बखीर आगले जी आया जी, सब बिस्मिल्लाह बोंजोर शानी हाओ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप प्रोग्राम में मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला गाना हम इंक्लूड करने जा रहे हैं द वन एंड ओनली बाय द अब्रारुल हक। इसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: देख कर तुझको मैं रंगीन से बुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं दिल से छुला देता हूँ। अच्छा, मैं ये गाना नुसरत फजल अली साहब ने भी गाया है और दूसरा किसी ने पता नहीं, किसी ने मकसूद राणा ने गाया है या लेडी असल ने गाया है, वो जो फिल्मी गाना है ना वो सुना है।
1: अच्छा, फिल्मी गाना है। मैं अगर रिमिक्स में सुना दूं तो
0: रिमिक्स में पता नहीं किसने गाया है।
1: नहीं, बहुत जबरदस्त होगा और आपको पसंद आएगा। ठीक है,
0: और रात वाला सात बजे वाला शो ऑल कर दिया,
1: वो तो कब का खत्म हो गया।
0: मैं हर शाम को रात को कॉल मिलाता रहता हूँ, सात बजे वाले लगता ही नहीं है।
1: अरे तो शो होता ही नहीं है तो कैसे लगेगी कॉल, किसी
0: बात
1: मेरा पता चल गया। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ये रहा गाना।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल, अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज, अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ, आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ, अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है, आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुप पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
2: डॉक्टर आगा लियाकत अली खान।

0: ओके जी, एक और कॉलर लेते हैं, चेक करते हैं कौन है, कहाँ से। हेलो। ओके, हेलो हेलो।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से?
1: वालेकुम।
0: हाफिज लखमीर भाई, गाना सुना रहे?
1: जी, सुनाऊंगा।
0: सुना दे।
1: अच्छा।

ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, ये गाना किसका है? ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और हम गाना प्ले कर रहे हैं आपका, और गाना ये रहा, इसको हम सुनेंगे और आगे चलेंगे। तो जी ये वाला नहीं प्ले करेंगे, एक सेकेंड, हम ये वाला प्ले करेंगे और इसको सुनेंगे, और इसी के साथ हम बहुत सारी लाइव कॉल्स भी लेंगे। वैसे मेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेक, फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: जॻहि जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अदा
4: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार, अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधायो।
5: ऑफिस जी मेहरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज़ भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: हमें रिजल्ट्स दे। तो ये अमल जो है ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक और बड़ी कामयाबी जो है वो डिजिटल जो जरई निज़ाम है उसका कयाम है, यानी उसको डिजिटलाइज आप कैसे कर सकते हैं कि अब पाकिस्तान में भी ये काम कुछ सतहों पर हो रहा है, यानी किसान अब मोबाइल फोन के जरिए मौसम देख लेते हैं, मार्केट के नर्ख देख लेते हैं, बीमारियों की पेशगोइयां देख सकते हैं और फिर जरई माहिरीन की मुशावरत हासिल कर सकते हैं। तो कुछ हिस्सों में पाकिस्तान के अब ये सारे काम थ्रू एप्लीकेशंस हो रहे हैं। बाज़ इलाकों में मस्नूई ज़हानत जो है वो फसल की तस्वीर का तज़िया करके भी बीमारी की निशानदेही करती है और फौरी इलाज तजवीज करती है। इसी तरह जो फैसले हैं वो अब अंदाजों के बजाय दुरुस्त आदाद शुमार की बुनियाद पर किए जाते हैं। 2025 की हम बात करें तो मौसम की बाज मुश्किलात के बावजूद चीन की जो गर्मियों की फसल की फी हेक्टर पैदावार थी वो तकरीबन 5634 किलोग्राम रही, मैं फी हेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिससे जाहिर होता है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने जो मौसमियाती चैलेंजेस थे उसके बावजूद पैदावार को मुस्तहकम रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और हालिया बरसों में जो स्मार्ट फार्मिंग है उसको भी बहुत फरोग मिला है और नेशनल लेवल पर डिजिटल ज़राअत का मंसूबा भी शुरू किया गया है, जिसके तहत मस्नूई ज़हानत को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बिग डेटा को, सैटेलाइट नेविगेशन को और जदीद मालूमाती निज़ाम को पूरे ज़रई शोबे में वसत दी जा रही है ताकि जो खुराक की पैदावार में मजीद इजाफा हो और वसाइल का मौसर इस्तेमाल भी मुमकिन बनाया जा सके। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ भी ज़राअत मईशत का एक अहम सुतून है, मगर अभी तक बेशतर किसान रिवायती तरीकों पर इन्हिसार करते हैं। फिर पानी की कमी है, मौसमियाती तब्दीली है, कम पैदावार है, जदीद मशीनरी की महदूद दस्तियाबी है, फिर मयारी बीजों की कमी है और फिर ज़रई तहकीक हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रई तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर रही हैं। चीन का तजर्बा पाकिस्तान के लिए कई अहम असबाक रखता है। यही वजह है आपने देखा कि एक प्रोग्राम शुरू किया गया पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जिसमें 1000 ज़रई माहिरीन को चीन भेजा गया मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी 200, 250, 300 ऐसे करके। और उन तमाम लोगों को जब यहाँ भेजा गया तो मकसद ये था कि वो आकर यहाँ पर चीन में जो ज़रई तहकीक है उसे देख सकें, यहाँ पर काम करने को तरीका है उसे देख सकें, कैसे आप स्मार्ट इरिगेशन से, ड्रोन टेक्नोलॉजी से पानी की बचत कर सकते हैं, फसलों को बेहतर कर सकते हैं और फिर यही काम आगे बढ़कर किसानों को फिर जदीद मशीनरी, आसान इख्सात और हुकूमती मुआवनत के साथ अगर फराहम की जाए तो वो भी ज्यादा बेहतर होगा। और फिर हमने मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो बात की वो अब किसी हद तक पाकिस्तान में शुरू हो गया। तो कई जो हमने फैक्टर्स गिनवाए थे चीन की ज़रात में डिजिटलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के हवाले से, उसमें से अगर मैं समझूं तो शायद किसी हद तक सैटेलाइट सिस्टम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और मार्केट के जो जो नर्ख हैं उसके अलावा पाकिस्तान में हम उस तरह से काम नहीं कर रहे जो प्रोडक्शन लेवल पर होना चाहिए था, बीजों के हवाले से, मशीनों के हवाले से, ड्रोन्स के हवाले से। पाकिस्तान और चीन का जो ज़रई तआवुन है वो मुख्तलिफ सतहों पर फिलहाल जारी है। चीन की जामियात में, तहकीकी इदारों में और ज़रई कंपनियों में पाकिस्तानी इदारों के साथ तआवुन होता है। उसमें बीज, काश्तकारी, पानी के बेहतर इस्तेमाल और ज़रई तरबियत के शोबों पर बात हो रही है, लेकिन इसको मज़ीद तेज़ होने के साथ साथ ये ज़रूरत है कि जो कुछ हासिल किया गया है यहाँ रह कर उन लोगों ने वो वापस जाकर उसको बेहतर तौर पर डिलीवर कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि लोग यहाँ आ तो जाते हैं, वो यहाँ देख भी लेते हैं, लेकिन जब वो वापस अपने मुल्क जाते हैं तो उनको वो हालात मैसर नहीं होते कि वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो नतीजा ये होता है कि एक एक्सपोजर तो हासिल हो जाता है लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, इसको क्लोज करें, तो एक बड़ा ज़रई तरक्की के हवाले से अगर हम बात करें तो कोई एक मशीन या कोई एक मंसूबा उसका नतीजा ये तरक्की नहीं है चीन की, बल्कि एक मुसलसल तहकीक है, मुसलसल जारी रहने वाली हुकूमती पॉलिसी है, जदीद टेक्नोलॉजी का बार बार शामिल होना है, फिर किसानों की तरबियत है और फिर मजबूत मंसूबाबंदी खास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो प्लानिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही वजह है कि चीन दुनिया भर में अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बड़ी तेजी से कामयाबी हासिल कर रहा है।
1: اوکے جی، تھینک یو سو مچ احتسام ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور ایک بہت اچھی امپیکٹ فل کنورسیشن کے لیے. تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، جس کا نام ہے ہرا بھرا پاکستان. اور ہرا بھرا پاکستان جس میں ہمارے ساتھ موجود ہے احتسام. سو اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک جس کی طرف ہم جائیں گے. اینڈ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک سندھ کی آواز.
2: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبھی روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

योगी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार। एक गदर ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आप लोगों के जो कि मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, जिनको हम बताओ जल्दी इंक्लूड करते जाएंगे। What a beautiful song, mashup song. ओके, अच्छा हमें कॉमेंट रिसीव हुआ है इस माँ किशोर, कहते हैं सलाम सिस, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, आई होप बिल्कुल ठीक खुश होंगी, है ना। वैसे कल मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो लास्ट लिंक में कोशिश करूंगा सुनने की और रिकॉर्ड भी करूंगा और उसको रात 12 बजे सुनाऊंगा, बस आप अच्छे से विश करना प्लीज। चले डन हो गया, हम विश करते हैं जी, और बहुत अच्छे तरीके से विश करेंगे आपकी वाइफ को, नहीं सॉरी हमारी भाभी को। अच्छा इसके अलावा गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके, स्कूल भी खुल गए हैं और बारिश के बाद नेटवर्क इश्यू था तो शामिल प्रोग्राम नहीं हो सकी रुखसार। अच्छा ये बात है, चलें ठीक है, कोई बात नहीं है।

usual, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. बर्थडे है भाई, बर्थडे है भाभी जी का, बर्थडे है तो हम डेडिकेट कर रहे हैं भाभी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग और बर्थडे की बहुत सारी बेस्ट विशेस. भाभी हमेशा हंसी रहे और सॉन्ग बिल्कुल आखिरी था. अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा बेस्ट विशेस की बात हो रही थी तो स्मार्ट किशोर जिनकी वाइफ का बर्थडे है तो हम भाभी को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहेंगे और हम दुआ करेंगे कि आप दोनों साथ में हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें और क्या. और ये के ज्यादा लड़ा मत करें, थोड़ा सा लड़ा करें ठीक है. थोड़ा सा लड़ना जरूरी होता है और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें हमेशा. और इसके अलावा मैं क्या कहूँगी, मैं स्मार्ट किशोर भाई से कहूँगी कि भाई भाभी को अच्छा सा गिफ्ट देना आपकी जिम्मेदारी है. बेस्ट विशेस का काम मैंने कर दिया है, गिफ्ट देने का काम आपका है अब ठीक है. और फिर मुझे पता चलना चाहिए कि गिफ्ट आखिर था क्या ठीक है, फिर मजा तो तब आएगा. और इसके अलावा जी मैसेजेस रिसीव हुए हैं नदीम अली शेख फ्रॉम रोड़ी से हमें सुन रहे हैं. जी आरजे रुखसार के सीईओ अच्छी हूँ जी. बाजी सॉन्ग सुनाओ घर से निकलते ही कुछ दूर जी. कहते हैं कि डेडिकेट टू मुंतजर मुताहिर और वहीद अली को. ओके इसके अलावा सफदर बलोच ने हमेशा की तरह मुझे शेर लिख भेजा है. थैंक यू सो मच माँ किशोर, थैंक यू सो मच आपका भाई. इसके अलावा आशी खास के लिए हमें सुन रहे हैं प्रज्ञान, बहुत जबरदस्त है जी, थैंक यू सो मच. और इसके अलावा हमारे साथ कौन मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद थे नूर हुसैन तुनियो, हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच आपका भी.

0: हम लेंगे आपसे इजाजत और लास्ट में हम प्ले करेंगे जी मैशअप मैशअप सॉन्ग तलहा अंजुम एक्स तलविंदर एफटी आतिफ असलम. तो इसको सुनेंगे और इसी को सुनते सुनते हम प्रोग्राम को कर देंगे रैप अप. और फाइनली अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी अब मंडे को ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजी. सुनना मत भूलिएगा जिंदगी गुलजार है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी. लिव सिंपल बट थिंक हाई. दिस इज मी आरजी रुखसार साइंस आउट. टेक केयर. गुड बाय. अमान खुदा. अल्लाह हाफिज.
1: अब तो अमजद जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं. जाने मन न वो दिल लौटने के नहीं. छोड़िए अब वो किस्सा पुराना हुआ. वो जो उलझा था वैसी हवा से कभी उस दिए को मुझे तो जमाना हुआ.

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: तर्जुमान ताहिर हुसैन चयो आहे त वज़ीर आज़म सां गॾु नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि गॾु हूंदो। सऊदी क़यादत सां मुलाक़ातनि दौरान पाक सऊदी लाॻापन ऐं ख़िते जी सूरतहाल समेत सफ़ारती कोशिशुनि जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। ईरान ऐं ओमान आबन हरमुज में बहरी जहाज़नि जे हिकु रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ईरानी परॾेही वज़ारत तसदीक करे छॾी आहे। तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमेरिका मुआहिदे जो गॾियल पधरनामो तयार करे रहिया आहिनि। टीं धुर जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघे थो। ईरान जंग ख़िलाफ़ हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते अमरीकी सदर ते नाराज़। अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट मूजिबि सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रंप ख़बरुनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। कूड़ियूं ख़बरूं पखिड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नई सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे। ईरान में हिकु धुर ॻाल्हियुनि ऐं ॿी जंग जारी रखण जी हामी आहे। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जी दावा चयो आहे त ॻाल्हियुनि ऐं छिकताण वारे अमल में सूरतहाल हेठि मथे थींदी रहंदी आहे। जेको बि थींदो अमेरिकी अवाम जे हक़ में ई थींदो। ओमान वेझो आबन हरमुज में ॿिनि ऑयल टैंकर्स में धमाका। बरतानवी मेरी टाइम एजेंसी मूजिबि बहरी ॿेड़नि में धमाका ओमान वेझो थिया आहिनि। वधीक तफ़सील न आहिनि मिलिया। थर में 175 अरब टन कोयले जा ज़खीरा मौजूदु आहिनि। पाकिस्तान मैदनी वसीलनि सां मालामाल आहे पर घणियूं सलाहियतूं अञा इस्तेमाल न आहिनि थियूं। मैदनियात जे शोबे जी तरक़ी लाइ सीड़पकारी टेक्नोलॉजी ऐं बहितर पॉलिसियुनि जी ज़रूरत आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस 2026 खे ख़िताब। वॾे वज़ीर चयो त थर जा ॿिए ब्लॉक गॾिजी लॻभॻ 2640 मेगावाट बिजली पैदा करे रहिया आहिनि। मक़ामी कोयले जे इस्तेमाल सां पाकिस्तान खे सालियानो 1.5 अरब डॉलर जी बचत थी रही आहे। पाकिस्तान में कोयले ट्रामे सोन ऐं नायाब मैदनियात जा वसी ज़खीरा अञा गैर फ़ाल आहिनि। आलमी तब्दीलीअ जो हिसो बणजण लाइ पाकिस्तान खे अॼु खां ई सलाहियतूं पैदा करणियूं पवंदियूं। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो जी कराची जे सिटी कोर्ट सां आमद। कराची बार जे सदर आमिर वड़ाइच ऐं ॿियनि सां मुलाक़ात कई। आईजी सिंध चयो त बार बेंच ऐं वकीलनि खे गॾिजी कमु करणो आहे। ग़लति फहमियुनि खे कंट्रोल करण जी कोशिश थियणु घुर्जे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ते गॾिजी कमु करणो आहे। आमिर वड़ाइच चयो आहे त आईजी जावेद आलम ओढो जे अचण ते शिकायतूं ख़तम कयूं आहिनि। हाणे न FIR घुर्जे, न वधीक एक्शन कम थिए या न वकील खे थाणे में इज़त मिलणु घुर्जे। चकवेझो पुराणे तकरार तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल। कोट शाहू थाणे जी हद में शींहं ऐं उमर शाकाणी जतोई जे धुरियुनि में झेड़ो थियो। धुरियुनि जी हिक ॿिए मथां फायरिंग। मोहम्मद मूसापुर रेसाक जतोई मारिजी वियो। मारिजी वियल जो लाश खानपुर इस्पताल मुंतकिल। धुरियुनि में फायरिंग जो सिलसिलो जारी आहे। काज़ी अहमद में पुलिस ऐं फोरन विच में मुक़ाबिलो। पुलिस अहलकार शहीद, हिकु फोरू बि मारिजी वियो। पुलिस मूजिबि पुलिस ऐं फोरन विच में मुक़ाबले दौरान पुलिस अहलकार पीर मोहम्मद हसन खोसो शहीद थी वियो। ॾोहारी गुलाब शाह मारिजी वियो। ॾोहारी मुख़्तलिफ़ केसनि में घुर्बल हो। वधीक जांच जारी आहे। सिंध हाईकोर्ट जो मलीर मां अगवा थियल 4 वरियुनि जी ॿारड़ीअ खे 12 अगस्त ताईं बाज़ियाब कराइण जो हुकुम। शाहीन बीबी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त 4 साल अॻु मुड़ुसु सरदार अली खां ख़ुला वरिती हुई। अॻोणे मुड़ुसु ऐं संदसि माइटनि धीउ सूधो अगवा कयो। अदालत SSP मलीर खे 6 ॾींहनि अंदरि ॿारड़ीअ खे बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾिनो।
0: आप सुन रहे थे GA FM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

हरापुर मतली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सुना प्रोग्राम है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हर तरह से आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखते आ रहे हैं। जनाब अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि खूबसूरती हमें कैसे मिलने वाली है, तो खूबसूरती जो है ना वो इतनी अच्छी वाली आपको मिलेगी कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान वाह मजे आ गए। क्योंकि अक्सर तौर पर देखा जाए अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इस टाइम में यानी कि ये जो इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी चल रही है हर किसी की, तो इसमें खूबसूरत बनना जो है ना वो बहुत ज्यादा आसान काम हो चुका है। और जबकि देखा जाए तो बहुत ज्यादा आसान काम के साथ साथ एक और मसला भी आ जाता है कि आप लोगों को पता नहीं होता कि आपसे कौन से ना प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करने के बाद आप लोगों को अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि भाई हमारी खूबसूरती तो हमें मिल जाए, लेकिन वो खूबसूरती जो मिले तो वो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दी में हमें गोरा बना दे, बाद में बहुत सारी साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पर छोड़ दे। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो वो कैसे मुमकिन है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को कमेंट खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं, सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में, आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे। और यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग मौजूद है उन तमाम लोगों से जनाब उनके हाल चाल भी पूछे जाएंगे। सो डियर लिसनर्स अंत की फहालत उनके से ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करी होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक। यानी तो यहाँ पर ना ऐसा होगा कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले हैं और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे भी मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए। आपको कहेंगी मेरी वाली गुड आफ्टरनून, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि

ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा हसीन सा यहाँ पर कसीदा आप एंजॉय कर रहे थे. इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. आपके सिद्धर आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे और जनाब आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए. इसी के साथ साथ बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में आके, यहाँ पर आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है तो वो भी जरा बता दे दें, ताकि आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप लोग टॉपिक को भी फॉलो करते रहे. ओके जी, तो आज के प्रोग्राम का सवाल जो है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि भाई ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के बहुत सारे निकनेम्स होते हैं, यानी उनको प्यार से बुलाया जाता है. हर किसी का या तो फिर एक निकनेम होता है या तो फिर किसी का एक ऐसा निकनेम होता है जिसे सुनकर भाई आपको लगता है कि इतना फनी निकनेम आखिर क्या सोच कर ही आपने मेरे पर रखा था. आज आप बिल्कुल मुझे ये बताने वाले हैं सबसे फनी निकनेम जो किसी ने आपको दिया हो वो जरा मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा निकनेम जो कि आप लोगों को दिया गया हो और वो आप सुनकर और सोच के कहते हैं कि ये भाई नाम मेरे ऊपर आपके क्या सोच कर रखा गया होगा. और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो GFM 88.8 हमारा पेज है, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है. पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए ताकि हमें भी पता चले कि ये जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है तो ये कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और कौन कौन हमारे साथ है.

0: मैंने आज प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक ये रखा है कि आप मुझे बताएं सबसे फनी निकनेम जो आपको किसी ने दिया हो, वो आप सोचकर ये समझते हैं या फिर ये सोचते हैं कि भाई ये आखिर निकनेम हमें क्यों ही दिया गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे निकनेम्स हमारे ऊपर रखे जाते हैं जो शायद हमारी पर्सनैलिटी को देकर रखे जाते हैं, या तो आप वो नाम जो है आपके ऊपर सूट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आज आप अपना निकनेम बताएंगे जो कि आपको लगता है कि ये बहुत फनी है और लोग आपको इस नाम से पुकारते हैं। ओके जी, इसके अलावा यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइएगा। उससे ये फायदा होगा कि आप बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाते हैं और वहां से नाम लेकर तलब करते हैं। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नंबर मौजूद होना चाहिए और नंबर है जनाब 0332738403 09 0332738403 09 और दूसरा नंबर है 0312505907 0312505907। ये नंबर आप जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने के लिए डायल कर सकते हैं। नंबर के ऊपर कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि भाई आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। चलिए जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप हमारे साथ मौजूद है। पोस्ट को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अच्छा, यहाँ पर अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम कहते हैं प्यारे भाई जान को। आदिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं कि लोग रोजाना इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं मगर हम फिर भी खुद को हमेशा जिंदा रहने वाला समझ बैठे हैं। हर जनाजा जिंदा लोगों के लिए एक खामोश नसीहत है कि अगली बारी किसकी भी हो सकती है, इसलिए अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें, दिलों को साफ रखें और नेकी का रास्ता अख्तियार करें क्योंकि मौत कभी दस्तक देकर नहीं आती। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी है। और जाम तालिब सोलंगी हमें सुन रहे हैं मोरो से, आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अदी तव जो प्रोग्राम बुध पया और तव शमन जो गानों बुधाइंदा तो मेहरबानी थी। बिल्कुल तव के शमन जो गानों बुधाइंदी ऐं चौथा कलाम बुधाइंदा अदी जी जी। बिल्कुल तमाम जो कलाम हलायूं था। सादिया हमें सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम की दी, गुड आफ्टरनून, आई एम सादिया अली फ्रॉम कराची। ओके सादिया, आपको वेलकम कहते हैं। माजिद हुसैन अब्बासी हमारे साथ कहते हैं वेलकम, वेलकम टू यू। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद हुसैन अब्बासी फ्रॉम अरावती। आपके प्रोग्राम का बहुत इंतजार होता है पर क्या करें, गांव में नेटवर्क सही नहीं आता। आए हाय, ये भी बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, सादिया लिखती हैं कि मैंने पोइट्री लिखती हैं, मत खोल मेरी किस्मत के किताबों को, हर शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। ओके आदिल हुसैन हमें सुन रहे हैं गाना, ओके आपका गाना लगाने की कोशिश करेंगे। शहजाद कादरी हमें सुन रहे हैं, शहजाद कादरी आपको वेलकम कहा जाता है। आबिद बरोही हमारे साथ हैं नौशरो फिरोज से, आप हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया। अब्दुल कैसर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। वासु भाई कहते अदी सिडो कैसी हो, ठीक ठाक हो, बिल्कुल मजे में ताम बुधायो। कहते असा भी तमाजे प्यारे प्रोग्राम में हाजिर थी वयासी। वासु भाई थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। और मोहम्मद जमान कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माई स्वीट सुंदर बुआ जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। अच्छा, एस एन आरबानी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम मैडम मुस्कान, ऐसी आप माजफा मजे में ताम बुधा की, ठीक ठाक मजे में। और निदड़ी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ओलाइल सलामत, वेलकम टू शो टॉपिक टूना। टूना नेम तो भाई क्या बात है, टूना फिश की बात हो रही है यहाँ पर। नहीं नहीं, ये निदड़ी का निकनेम है और बहुत खूबसूरत निकनेम है। ऐसे आज अपने जो है ना कोई फनी सी निकनेम मेरे साथ शेयर कीजिए जो आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि ये नाम मेरे ऊपर आखिर क्या सोच कर ही रखा गया होगा। ओके जी, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और जल्दी जल्दी से प्रोग्राम की पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए ताकि बहुत सारे लोगों को पता चल सके कि प्रोग्राम लाइव है और यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ओके जी, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। टाइम यहाँ पर हुआ जाता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, सो वापस जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय Why did you
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9-8691
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम में फन करते हैं, प्रोग्राम में अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं और आप लोगों के साथ बातें करते हैं और इसी के साथ साथ आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है जो कि भाई जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर देखा जाए तो भाई आप लोग अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंतखाब करके देखा होता है, आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं लेकिन आप लोगों को रिजल्ट्स जो है वो अपने एन मुताबिक नहीं मिल रहे होते हैं। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, हम क्या करें, तो आप ऐसा कीजिए, आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। ओके जी, तो आप लोगों को बताया जा रहा है प्रोडक्ट के बारे में जरा तफसील के साथ। अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो आज आप लोगों को बताया जाएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। सो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में हम जरा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बातें। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ये दो प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दो प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के ऊपर कैसे काम करने वाले हैं, कैसे आपको खूबसूरत बनाने वाले हैं, तो बताती हूँ ना, रुको जरा, सब्र तो करो। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी यूज किया जा रहा है। और इसको यूज करने की सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूलों को जो है ना वो ज्यादातर वैल्यू इसलिए दी जाती है क्योंकि वो आपके हर स्किन के ऊपर सूट कर जाते हैं। और उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर भी तैयार की गई है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रोबीड्स फार्मुलेशन है, अल्फार्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को रिपेयर करती हैं, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, आपकी स्किन को जो है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यूज की जाती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको देगी जी परफेक्ट वाला हुस्न। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करें तो क्या आपके चेहरे पर भी सूट करेगी, तो बिल्कुल जी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना उससे आप बिल्कुल लगा सकते हैं बेफिक्र होकर। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के मुताबिक ही तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, आपकी जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में भी मदद देती है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बाकायदा इस्तेमाल जल्द की बेरोनकी कम करता है और चेहरे को ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाने में भी मदद देता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल खसूसी अज्जा जो कि आपकी जल्द को फ्रेश एहसास देंगे और खूबसूरती में भी इजाफा करेंगे। तो रोजाना इस्तेमाल से आपकी जल्द को कुदरती निखार और खूबसूरत चमक जो है ना वो मिलती रहेगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करें, ये तो भाई फायदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का था। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ कोई अच्छा सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए हाजिर खिदमत है जनाब डी स्किन फेस वॉश। और डी स्किन फेस वॉश की बात आप लोगों को बताते चलूं तो डी स्किन फेस वॉश इतना मजे का, इतना कमाल का प्रोडक्ट है। ये जनाब हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। इसका फायदा ये होता है कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो है ना ये आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, डीपली आपकी स्किन को क्रीम जो है ना वो आपकी स्किन के अंदर जाकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्लीन करता है और हाइड्रेट भी रखता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि गर्मियों के सीजन में ज्यादातर आप जितना पानी पीते हैं ना तो आपकी स्किन ऐसे डिहाइड्रेट जो है ना वो हमेशा आपको महसूस होती है कि भाई आपकी स्किन रूखी सूखी सी है। तो उसको आपकी जो स्किन के अंदर जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे या डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश यूज करते रहेंगे और फेस वॉश करते रहेंगे तो आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट भी रहेगी, आपकी स्किन पर ग्लो भी आता रहेगा और आप खूबसूरती का एहसास भी महसूस करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको परफेक्ट वाला हुसन मिलता रहे। उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 03125025907 और दूसरा नंबर है 03327384309। ये नंबर्स आपकी आसानी के लिए है, जल्दी से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए और मालूमात लीजिए, मिल रहे हैं तो बढ़िया, नहीं मिल रहे तो इन नंबर पर जो ना वो राबता करते रहिए। जैसे बहुत से लोग आकर ये कहते हैं कि बाजी के साझे एरिया में तो अन्यथा कौन मिले, तो
त पापा ही नंबर से के तमा के बुधाया वन था ना इन नंबर से तमा जल्दी जल्दी राबतो करे पांजी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था। ओके जी, सो अवेलेबल कराते रहिए, खूबसूरती में इजाफा लाइए और जरा अपने आप को महसूस कराइए कि आप अपनी केयर करते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं 8881 और फेसबुक पर, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, हाँ जी, सबसे जो फनी निकनेम आपको दिया गया हो, ऐसा आपको महसूस होता है कि ये जो मेरा नाम है ना ये बड़ा फनी है और ये आपको किसी ने दिया है, वो नाम आप मुझे बताएं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8881 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए।

0: मुझे डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वालों, बताओ जी रिजल्ट कैसा मिला?
1: चांदी वर्गे दंद चमकने मर जावा गड़ खाके, ओए सारो की जान दे छड़ियां दे तू हसी बच बचा के।
0: ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम बारिश सिद्रा, क्या हाल है आपके? मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, आपका प्रोग्राम वीआईपी है मीरपुर खास का, उमीद अली लाशारी है। सलाम राशिद लाखो अदील अब्रो खाले जुनेजो एंड यू प्ले शमन हाजिर शमन हलायू था, और ये हमारे साथ हैं सोने मानो के सलाम रियाज महर जो रियाज महर भात आज मोहब्बत प्रोग्राम बुधो पड़ा मकसूद मला हमारे साथ में रापुर से कहते सिद्रा मुस्कान आदाब आदाब मुझे माशा मंजूर का गाना तो सुनाना तुझे हुकूमते हाजिर थींदा हूँ हर वक्त ओके मां कोशिश कदम सभी जहाँ गाना हलाईंदा सी ठीक है और चाचा खाली तुम भी छो अच्छा कहते हैं बेटा सिडो मैं जब तक जिंदा हूँ आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा आप कुछ भी कहो चले मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि आप हमेशा मेरे साथ रहें बहुत शुक्रिया जी और कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट बिल्कुल आपका गाना चलाएंगे मकसूद कहते हैं सिद्रा जवाब मुझे घर घर वाले मासा मासा मासा क्यों बोलते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो क्यों बोलते हैं मासा मासा अच्छा मकसूद को मासा बना दिया सही है भाई कुछ और नहीं बनाया अच्छा कहते हैं सिद्रा मुस्कान देखो आपका शो कितना अच्छा है कभी कभी गाने की फरमाइश करता हूँ पर पार तो हो जाए अच्छा अच्छा मैं कोशिश कदम तांची गाने जी उनके हलाए वी ठीक है और कहते हैं कल मेरी चलें भाभी को बोलिएगा ट्राई करती रही आपकी कॉल भी कभी ना कभी मिल ही जाएगी बिल्कुल से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए कंजूसियां यहाँ भी मुड़ो ना था नहीं माना

प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों की खूबसूरती को एहसास हो कि आप वाकई कुछ ऐसा इस्तेमाल करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है. जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अम्मी रो वाला एहसास होगा. अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम भी कुछ अच्छा इस्तेमाल करें तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश

जी विलेज सोनो खान लाशारी मीरपुर खास से हमारे साथ मौजूद है इकबाल लाशारी भाई, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। नजरी कहती है कि मुझ पर काफी निकनेम है भाई वालों के, अम्मी के, दोस्तों के, कौन से बताऊं जो सबसे फनी लगता हो आपको, कि भाई ये सबसे फनी निकनेम है मेरा वो बताएं। और उनका अलावा किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजिर आहे जाई बुधा कसम दई। अच्छा उम्मीद दिल कहते हैं जिद्दी और जिद्दी कैसी हैं आप, ठीक ठाक है ना, ऐसे ही खुश रहें, हंसी मुस्कुराती रहें। आपका शो खजूरों के पेड़ पर मजदूरों के साथ सुन रहे हैं और कालू आपको सलाम दे रहा है। कालू भाई को बोलें ग्रे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए ताकि कालू से गोरू हो जाए।

आप इस्तेमाल करेंगे जी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड जी स्किन फेस वॉश, क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे ना, खूबसूरती भी वो वाली जो हमेशा आपके साथ मौजूद रहेगी। बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये हमारे साथ रुखसार कहती हैं कि नहीं नहीं, रुखसार तो स्कूल से आने वाली है, शो सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा, अल्लाह पाक आपको हंसा मुस्कुराता रखे। मीरपुर खास से गुलाम मोहम्मद मरी मीरपुर खास से। अच्छा भाई, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं आप मुझे कभी कभी। चलें, थैंक यू। अच्छा किशोर कहते हैं, तुझे अखियुनि में ना निंड आया, मूंखे फील थे पियो, तव्हांखे सही फील थे पियो, निंड ना बस हलाए छो ईअं थोरो थोरो ईअं आहे, स्लो स्लो, तॾहिं मां अॼु सोचां पई त गाना कुझु फास्ट हलायूं जीअं तव्हांखे महसूसु न थिए। पर तव्हां ॾाढा माशाल्लाह, इहो वेरी चलाक ब्रो।

चाचा खालिद कहते आपका निकनेम अच्छा है सर जो ये टॉपिक है सर मेरा कोई नहीं निकनेम आई एम खालिद जुड़ें जो कभी बचपन में किसी ने रखा होगा कोई पैर से बुलाता होगा या फिर नहीं। अच्छा सादिया कहती है मेरा निकनेम पिंकी था। ओके पिंकी। मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक कमांडो कह के फ्रेंड्स बुलाते हैं जब मुझे तो पर मुझे तो कमांडो की वर्दी से भी डर लगता है। यही होता है हो तंज में कोठी ना होंदा। अच्छा निदड़ी कहती है मेरा एक भाई मुझे ओगी बोलता है और दूसरा भाई डी बोलता है और फ्रेंड्स में कोई निदु कोई निदी बोलता है और मेरा फेवरेट निकनेम है निदड़ी। तुम्हारा हर नेम दिया तुम्हारा हर दिया हुआ नाम अच्छा लगता है मेरे को। अल्लाह मैं सदको बनाया मैं सदको। पोस्ट को लाइक और शेयर किया ही नहीं कीजिए जरा।

अरे भाई मत करे। आप जानते हैं मुझे सब कुछ पता होता है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन ये बात है कि मैं चाहती हूँ प्रोग्राम का माहौल जो ना वो जरा ठीक ठाक रहना चाहिए। मैं कोई प्रोग्राम में मेस नहीं चाहती। ओके जी, उनके अलावा ये हमारे साथ है नसरुल्ला सूरों के प्रोग्राम जो चंगो मुड़ से भी अच्छी हुए माशाल्लाह नजर

कि आप बात है बहुत ही खूबसूरत सा गाना फरीहा परवेज की आवाज में हमने एंजॉय किया। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से बताइएगा ताकि आप लोगों की खूबसूरती कहां तक पहुंची मुझे अंदाजा हो जाए। ऐसे के साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल होने चाहिए तमाम प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल आप अवेलेबल करा सकते हैं। बस जो नंबर आप लोगों को बताए जा रहे हैं उनके ऊपर राता कीजिए ताकि आप भी ये समझ सके कि हमारे करीबी जनरल स्टोर पर भी दी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, दी स्किन फेस वॉश हो या फिर व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स हो तमाम अवेलेबल हो जाए।

श्री वासु भाई खे अदी सिडो जवाब कॾहिं कॾहिं मूंखे टी वासा एतिरा दफ़ा मज़ाकनि में चवंदा आहिनि टी वासा ये क्यों कहते अच्छा किशोर भाई कहते चाप एक बाबा सही शहजादा कहते हैं मेरे भांजे स्मार्ट चाचू कहते हैं बाकी बचपन से दोस्त और काफी रिश्तेदार के कहते हैं ओके मिस्टर केके लेकिन सबसे फनी नाम बताना था

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं. और उसी के साथ साथ हांजी चाचा खालिद कहते हैं सिद्रा डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं नहीं, अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन के अंदर जो डिहाइड्रेशन जमा हो जाती है ना वो खत्म हो जाएगा, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी. बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए सोली सिंधी में. और मीर तारिक बलोच हमें सुन रहे थे, असा भी शामिल आई हूँ प्रोग्राम में. मोहब्बतूं भाजू वेलकम. अच्छा अदो अदो चाहतो चवे अदी, तू अजकल मुखे हल्के में वेठी पयो लगे थो मुखे भी निदड़ी वांगुर मुंह खराब करनो पवंदो. निदड़ी मूसा कदे भी मुंह खराब ना कयो. यस वो सबनी सा कंदी पर मूसा न कंदी. बाकी हल्के में कौन वरतो आहे, तमां सबनी खां भारी आयो. यस आईली फनी कोने को सच्ची बताया सोचे बैठो. अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हैं असांजो त माइट निकनेम रखियो ही कोन, एक प्यारे माण्हू मिस्टर खड़ूस रखियो हुयो. अच्छा पर तव्हां खड़ूस त न आहियो. अच्छा साजिद हुसैन सुमरु भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अदी. ओके आप हमें मिठू देरों से सुन रहे हैं, खुश आमदी दिन वेलकम कहा जाता है आपको. ऐसे ही प्रोग्राम की पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए, शामली प्रोग्राम होते जाइए और टॉपिक को फॉलो करते जाइए. और बताइए आप हमें कहां से सुन रहे हैं. उसके अलावा टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे वापसी जल्दी आप लोगों के पास. तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए.

0: It's 2 p.m.
1: This time check.
2: करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें। अब आप सुनेंगे
3: जीएफएम नेटवर्क केटीएन न्यूज।
4: मीरपुर डिवीजन में चार सीटों पर कुछ पार्टियां खां धांधली करे खसी हुई हूं। राणा सनावला जो बयान धांधली जो सबब बनयो। पाकिस्तान में कदें भी चूंडू मरलेवार नाहन थियो। टर्न आउट में बुधाए रहो आहे ते चूंडन में धांधली थी आहे। ही पोस्ट डिवीजन में चूंड मरलेवार कराण चाहन था।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आहिन
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। बिल्कुल जी, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जनाब, तो आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से बताएंगे और साथ ही साथ मैंने पहले आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, सो अभी आप लोगों को बताया जाएगा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। बिल्कुल जी, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया उनको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बत और समात और चाहत उनका बेहद वाला शुक्रिया। और मैंने आज आप लोगों से सवाल यानी कि प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि आप मुझे बताएं कि आपका सबसे फनी निकनेम जो आपको किसी ने दिया और आपको ये लगता है कि ये भाई बहुत फनी मेरा एक निकनेम है, जो शायद आप उससे लोगों को बताने में भी थोड़ा घबराते हैं कि भाई काश यो अगर नालो मानन की खबर पड़ जी वही ना तो माणू मुते जरूर टोका करना। सो तवां बट भी कोई एड़ो तवां जो फनी निकनेम आए सको तवां मुखे बुधाइंदा। उनके अलावा तुम 888 और फेसबुक से मुझे ज्वाइन करना वनो पया, ठीक है? सो 888 और फेसबुक से तुम आसा के ज्वाइन कयो, फेसबुक वाला मानो पोस्ट के ज्यादा खान ज्यादा लाइक और शेयर करना वाले। ओके जी, उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। मतलब ऐसा है कि मेरा दिमाग तो देखें कि मैंने कितने टाइम से ये एक मिस्टेक करती आ रही हूँ। व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इतनी सारे जबकि प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने सिर्फ एक लिंक दिया हुआ था कि भाई व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सिर्फ एक लिंक सही लगता है जैसे, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं तो इसके अंदर जो है ना आप लोगों को दो लिंक मिल रहे थे, यानी कि 2 बजे के बाद आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाता था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों ना हो जाए कि पहले घंटे में यानी कि पहला एक ही लिंक समझ ले देना वो, तो उसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाएगा, बाकी जो दूसरा घंटा होगा तो उसमें आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि व्हाइट एज के बहुत ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स हैं तो उसको टाइम भी बहुत ज्यादा चाहिए, समझ रहे हैं? बिल्कुल, ये चीजों को अच्छे से समझने के लिए टाइम हमारे पास जबकि बहुत ज्यादा है तो आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कितने सारे अच्छे अच्छे कितने शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मिल रही है, व्हाइट एज लवली क्रीम मिल रही है, डॉक्टर पिम्पल ट्यूब मिल रहा है, व्हाइट एज फेस वॉश है, व्हाइट एज ब्यूटी सोप है, और उसके अलावा व्हाइट एज का लोशन भी आता है और व्हाइट एज के हेयर रिमूवल लोशंस भी आते हैं जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है। उसके अलावा हर तरह का आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि व्हाइट एज वालों ने बहुत ही सोच समझकर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने के साथ साथ ये जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं ये जनाब नेचुरल अजा से तैयार किए गए हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। जनाब जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, ये तीनों चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। और फायदा भी ऐसा वैसा फायदा आप लोगों को ऐसा मिलेगा कि आप लोग ये कहेंगे कि भाई हम क्यों नहीं पहले इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक है और हर तरह की स्किन के ऊपर सूट करने वाला प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाइट वेट सा फार्मूला है जनाब। सो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलें भाई हमने व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम तो इस्तेमाल कर ली लेकिन आपके पास कोई अच्छा वाला फेस वॉश या फिर सोप नहीं है तो आप परेशान क्यों होते हैं, भाई मैं बताती हूँ ना, आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी सोप मौजूद है एंड व्हाइट एज का फेस वॉश भी मौजूद है, यानी कि तमाम उठाने कोई भी जिकवाना ये अच्छा जमाई नखे हाँ कोई भी तावट बहानों को ने को तबा असा साबुन अणंदायो असा फेस वॉश अणंदायो हाँ तावट बई चीजू आए अगर तुम साबुन इस्तेमाल करना है तो तुम व्हाइट एज जो ब्यूटी सोप मौजूद है, अगर तुम फेस वॉश इस्तेमाल करना है तो तुम व्हाइट एज जो फेस वॉश भी मौजूद है। सो ही उही प्रोडक्ट आए जिके तुम बिल्कुल इस्तेमाल कर सको था। ओके जी, सो व्हाइट एज के अगर हम यहाँ पर फेस वॉश की बात करते हैं तो व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना इसे बहुत बेहतरीन तरीके से और सोच समझ के तैयार किया गया है, वो ऐसे क्योंकि व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ये विटामिन सी से तैयार किया गया है और विटामिन सी आपके स्किन के ऊपर आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बिल्कुल जनाब, सो व्हाइट एज का फेस वॉश है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा और क्रीमी सा फेस वॉश है, इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा महसूस होगा कि भाई हाँ वाकई अच्छा चीज जो है ना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आप
बिल्कुल जी, व्हाइटिश का ब्यूटी सोप लगाना चाहते हैं तो व्हाइटिश का ब्यूटी सोप जो है वो डिटो

बिल्कुल जी, चाचा पूछ रहे हैं कि एवोकाडो कौन सी क्रीम में या फेस वॉश में मौजूद है। एवोकाडो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर मौजूद है। व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो नाइट क्रीम है, जेका तव्हां राजी टाइम लगाए सघो था। ऐं बाक़ी फेस वॉश में वाइटमिन सी आहे। ऐं हा, साबुण में बि एवोकाडो अथव, व्हाइटिश जे साबुण में।

ओके जी, असांखे न माण्हू माराइणा आहिनि, पर असांखे माण्हू सोना ज़रूरु करणा आहिनि. सो बिल्कुल तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करे सघो था. अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है सलाम भाऊ जी, हाउ आर यू? आज हम भी ज्वाइन कर चुके हैं आपका शो. क्या अच्छा किया ना, एंजॉय करते हैं जी वाइट एज ब्यूटी शो. बिल्कुल जी भाऊ, आपने बहुत अच्छा किया. आप हमारे साथ ही हमारे प्यारे भाऊ जयपाल भाऊ, और कहते हैं पोएट्री अर्ज है भाऊ, हैरान ना हुआ कर यूं मेरे याद करने पर, हैरान ना हुआ कर यूं मेरे याद करने पर, ताल्लुक जिनसे दिल का हो वो हर पल याद आते हैं. जयपाल भाई क्या बातें, क्या बातें. सफा तमा कमाल करी छो. अच्छा, ये हमारे साथ ठरी मीरवाज से महबूब अली शेर, रिजवान अली और इमरान अली शेर. भाऊन जो मोहब्बत हुआ इन प्रोग्राम में तुम्हें चौथा भली करी आए. और हैं जी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम फुलजी स्टेशन लग नूरपुर खां, फौजी पठान खान खोसो.

सीरीज ऑफ पठान खान को सुबह तुम सलाम डिना आई डॉक्टर हसीना सुमरो की ओके जी ओके उनके अलावा अल्लाह रखियो मेमन हमारे साथ है सैफुल्ला मेमन निजाम अली मेमन और हजार खान फ्रॉम लाड़काना अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सदरा मुस्कान जी आपका शो माशाल्लाह गुड है ओके कहते अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ना हमेशा सलामत रखे आमीन मुरीद अब्बास का सॉन्ग लगाइएगा याद यको तो कयान से डेडिकेट आपकी टीम और सब सुनने वालों को थैंक यू ओके जी बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहा जाता है इस्तेमाल करी सगो था वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तवा के खबर है हर तरह जो प्रोडक्ट तवा जले मौजूद है सो वाइट एज ब्यूटी क्रीम आ है वाइट एज ब्यूटी सोप आ है वाइट एज फेस वॉश आ है तवा इस्तेमाल करी तवा जी खूबसूरती के मिले एक नो एहसास एक नई खूबसूरती एंड तवा भी जो वाह सही वाह हाने असा जी हिस्सा वाला प्रोडक्ट भी मार्केट में अच्छी गया है ओके जी मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर अस्सलाम वालेकुम बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है ओके वेरी नाइस ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम प्यारी मैडम आरजे सिद्रा मुस्कान फुलजी स्टेशन लग

थोड़ो इहो सम्झ में न आयो तव्हांजो सॼो इहो जेको तव्हांजो ॻोठ आहे सिटी आहे. आप हमारे साथ जी डॉक्टर हसीना, डॉक्टर हसीना साहिबा, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है. अच्छा हैप्पी कहती है. अस्सलाम वालेकुम सिडो जानी मेरी प्यारी, मैं भी आ गई आपकी प्यारी सी महफिल में. आपको वेलकम कहते हैं, वैसे आपका नाम बहुत खूबसूरत है. हैप्पी आपका निकनेम है लेकिन आपका नाम बहुत खूबसूरत है. और सजाद अली सुमाली कहते हैं नवाब शाह से सॉन्ग प्ले करें. ओके मां कोशिश कयां थी. वैसे हाणे तकरीबन सभिनी जा गाना लिस्ट में अची चुका आहिनि, सो हाणे जेको गाने जी फरमाइश कंदो न थोरो तव्हां स्टॉप लॻाइजो.

சத்துக்கும் சதுக்கும் சதுக்கோ சதுக்கோ சதுக்கோ சதுக்கோ சதுக்கோ சதுக்கோ सदको अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है। अली अकबर बरोही भाई आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। मोहम्मद मीरन जकरानी भाई जेकब आबासी में सुन रहे हैं, वेलकम इन खुश आमदीद। अच्छा ये हमारे साथ हैं मिसेस गुलाम मोहम्मद मरी मीरपुर खास से, यानी कि आप रुखसार मरी की वालिदा हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको वेलकम कहा जाता है, आप हमारे साथ हैं। अली अकबर ब्रोही भाई आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए थैंक यू। अच्छा ये हमारे साथ ही साद साद साद वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, कैसी है, मैं ठीक हूँ। कहते हैं अदी तां जो प्रोग्राम तो वीआईपी आ है, अदा तां जो मोहब्बत हुआ इन प्रोग्राम तां के पसंद अच्छे पयो।

सही था जो हिकड़ो अगे ही नखरेली आए वरी मथा तू अन्या लाड कर कने कने मड़े ये निदड़ी दे भी प्यार इंदो आ अच्छा दर्दी तिल के लिए चंदा टॉपिक अम्मी निदुड़ी बोलती है और अलीजा पतलू बोलती है क्योंकि मैं बहुत पतली हूँ और सबसे प्यारा निकने मुझे स्वीटी लगता है जो तुम समझ गई हो। यस मैं समझ गई, बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी स्वीटी।

0: करें।
1: सदको सदको है, सदको सदको सदको, तुम जन ना जन पा।
0: ओके ब्रेक आने गाने का पोएट गाए थे बैठा हो जुमा ओ ही मनी ओ ही मोटा में थे।

0: DAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है.
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए.
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार.
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है. फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
3: लाड़काने वासन लाए खुशखबरी, डॉक्टर अजीत कुमार सचदेव एमबीबीएस एफसीपीएस डर्मेटोलॉजी चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर हिते मोहिड़ा डड मल्लो पुरानी खारिश वार चरो पुरानो फट चिटरी लैशमिनियासिस चेहरे जा दाग बग नहन जो खराब छन वारन जा मसला एलर्जी ऐ औरतन जे चेहरे ते गैर जरूरी वारन जो इलाज बेहतरीन नमूने कयो वजे थो. याद रखंदा सिर्फ जुलाई महीने जी हर जुमे ते चमड़ी जे मरीजन जी मुफ्त चकास कई वेंदी. डॉक्टर अजीत कुमार सचदेव चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर.
4: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिकर छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज. एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए. घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569.
5: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन. मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें. मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002734. निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453.
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में. डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
7: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी. आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आरई 03073592120।
8: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: साने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 03011 96 8051।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ओके देखिए आप बातें बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो बताया करें ताकि हमें भी एहसास हो कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं वो वाकई प्यारे होना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ खूबसूरती हासिल करना जो होता है ना वो बहुत एक आजकल के दौर में एक नॉर्मल सा काम हो चुका है। वैसे भी देखा जाए तो मार्केट में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स में से सही प्रोडक्ट जो है ना वो चूज करना एक बहुत मुश्किल सा काम लगता है मुझे तो। अगर आप भी इस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जो है ना स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद होना चाहिए और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही आप इस्तेमाल करें, तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम, व्हाइटिश ब्यूटी सोप एंड व्हाइटिश फेस वॉश के बारे में बताया, तो बिल्कुल अभी बारी आ चुकी है कि आप लोगों को व्हाइटिश लवली क्रीम एंड व्हाइटिश डॉक्टर पिंपल ट्यूब के बारे में बताया।

ओके जी, भले याद करे ना पर दुआऊं करण वारा जेके ये वरी मानू हुंदा है ना, वे डाढा भला मानू हुंदा है। सो तव्हां भी अगर कोई मानू तव्हां जे जिंदगी में एड़ो आए जेको भले तव्हां खे याद न करे, तव्हां जे जिंदगी में आउट थी वयो हुजे, पर दुआ जे सिलसिले के कॾहिं बि बंदि न कंदा कयो। वैसे चवंदा ना दुआऊं घुरी न आहिनि वठबियूं, जिन जे माण्हू जे लाइ दिल मां दुआऊं पाण निकरंदियूं आहिनि उहे माण्हू ॾाढा अनमोल हूंदा आहिनि। सो बिल्कुल तुंहिंजो साथ हुजे सुहिणा।

ओके जी, सो कहते ना कि गाना चला दे लेकिन सुनने नहीं देती है। तो बिल्कुल जी, गाने सुनिए और इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम और व्हाइटिश लवली क्रीम और डॉक्टर पिंपल ट्यूब के बारे में भी बताते हैं, और उसके अलावा आप लोगों के फीडबैक्स भी हैं, तो वो भी जरा आप लोगों को, ऐसा ना हो कि भाई हमारे फीडबैक्स तो आप पढ़ती नहीं है, तो आप लोगों के फीडबैक्स की जानिब भी आया जाएगा। ओके जी, सो यहाँ पर व्हाइटिश लवली क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाइटिश लवली क्रीम जो है ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिंस का फार्मूला है, जिसके अंदर जनाब 30 वाइटामिंस के कैप्सूल्स ऐड किए गए हैं। और ऐसा नहीं कि भाई आप ये सोचे कि भाई सिर्फ हमारी स्किन की हिफाजत ही होगी, या फिर ऐसा वाला सीन बन जाएगा कि हमें सिर्फ गोरापन मिल जाएगा, या फिर व्हाइटिश लवली क्रीम की सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि व्हाइटिश लवली क्रीम को सिर्फ इस तरह नहीं तैयार किया गया कि भी आप लोगों को गोरा निखार मिले, आप लोगों के चेहरे पर निखार आए, बल्कि ऐसा भी सीन है कि आप लोगों के चेहरे पर जो ये सूरज के खतरनाक असरात आते हैं ना, तो उनसे भी आप लोगों को बचाया जाए। तो आप लोगों के लिए व्हाइटिश लवली क्रीम है, जिसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक, और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। और व्हाइटिश लवली क्रीम के साथ साथ जो है ऐसा वाला सीन बनाइए कि इसे आप अपने डेली बेसिस के लाइफ के अंदर ना यूज कर लीजिए, चाहे आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई जॉब करते हैं, या फिर आपने किसी शादी फंक्शन में जाना है, तो गर्मियों का मौसम जब भी होता है तो आप लोगों के पास जो है ना मेकअप करने का थोड़ा एक ऑप्शन ही होता है कि भाई हमने मेकअप नहीं लगाना। वैसे भी गर्मियों के सीजन में जब मेकअप लगाते तो आपने देखा होगा बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिनको मेकअप या तो लगाना नहीं आता, या तो फिर पता नहीं होता कि भाई गर्मियों में मेकअप किस तरह लगाया जाता है, और उस सूरत हाल में ऐसा सीन बन जाता है कि आप अपनी पूरी शादी जो है वो खराब भी कराती है, आपकी स्किन इतनी खराब हो जाती है, पैची हो जाती है, आपका मेकअप नजर आता है इतना ज्यादा बुरे तरीके से। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का यूज कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लगाने के साथ ही आप लोगों के चेहरे पर जज्ब हो जाती है, और आप लोगों के चेहरे पर एक नया सा निखार आना स्टार्ट हो जाता है, आपके चेहरे पर शिमरी इफेक्ट आ जाता है, और आप लोग महसूस करते हैं कि भाई वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर चुके हैं। और व्हाइट एज लवली क्रीम जिसे आप घर में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, हजरात, खवातीन, हर कोई लगाएंगे। और उसके अलावा अगर आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। बिल्कुल जी, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आपके चेहरे के एक्नीज के खात्मे के मुताबिक तैयार किया गया है। अगर आप एक्नी को खत्म करना चाहते हैं तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल कीजिएगा। और उसी के अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर एक्नी नहीं लेकिन एक्नी के निशानात काफी ज्यादा है, तो उसके लिए भी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब यूज किया जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ आपके चेहरे के एक्नीज को खत्म करेगा बल्कि आपके चेहरे पर जो ये निशानात होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, या फिर आपके चेहरे पर कोई चोट का निशान हो, कोई जलने का निशान हो, इतने सारे निशानात अगर आपके चेहरे पर मौजूद है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद आपको मिल जाएगी बेदाग, क्लियर और खूबसूरती वाली स्किन। तो इस्तेमाल कीजिए। वैसे व्हाइटिश लवली क्रीम को लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप दिन में जितनी मर्तबा लगाएं आप लगा सकते हैं। फेयरनेस क्रीम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप सुबह लगाएं, दोपहर, रात को, जब आपका दिल करिए आप लगाइए। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है इसे आप लगाएंगे दो मर्तबा, यानी कि सुबह को भी लगाएंगे और आप रात को भी लगाएंगे। लेकिन लगाने से पहले ये बात याद रखा करें कि आप अपना फेस वॉश लाजमी किया करें। फेस वॉश करना बहुत जरूरी होता है, तो फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाएं तो वो लगाइए, अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो वो लगाएं। और इसके अलावा जो है ना डॉक्टर पिंपल ट्यूब अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप जहां जहां पर एक्नी हो, जहां निशान हो, जहां कट हो, वहां वहां पर लगाइएगा, पूरे फेस पर नहीं लगाना, ठीक है।

ये हमारे साथ जो पैनल पर हैप्पी गर्ल होती है वो कहती है मेरा फनी निकनेम है किट्टू, मुझे किट्टू बुलाते हैं, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और फौजी पठान खान कोसो भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इतने सारे आपने मैसेजेस कर दिए हैं। और हमारे साथ जयपाल भाई कहते हैं भाऊ जवाब लास्ट में, अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, खुशी इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएगी फिर, हाँ हम वाकई मरीज बनेंगे हम खुशी से इलाज करवाएंगे, ठीक है, खुशी को पारित कीजिएगा हमारे। और मकसूद मल्हा भाई आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। मेरे प्रखास अब्दुल्ला महर भाई आप वाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू। अच्छा ये बदीन खान डॉक्टर शौकत अली है सिद्रा तान जो प्रोग्राम सिटुआ, सो थैंक यू।

ओके जयपाल भाई कहते हैं कि खुदा कबूल ना करे वो दुआ जिसमें मांगा हो किसी और ने किसे। अच्छा कहते हैं वेदर अपडेट कीजिए हमारे लाड़काना सिटी की। वेदर भाई ऐसा है कि गर्मी है, समझ नहीं आ रहा कि बारिशें पूरे मुल्क में हो गई, बस लाड़काना में ही बारिश नहीं हुई, तो ऐसा वाला सीन है कि बहुत गर्मी है। और उनके अलावा कहते हैं आप भाऊ हमारी भी दुआ है आप हमेशा खुश आबाद और हर वक्त हैप्पी रहें। डियर भाऊ जी थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे भाई जान। एरम कहती है वालेकुम अस्सलाम मुझे प्यारे दिलबर दोस्त जवाब है। अच्छा तो क्या अब भी आप मोटी हैं? लुबना लाइफ में ॾाढो ॾुखु अचे थी। मेरा तो कोई निकनेम ही नहीं है। आहे जो तव्हांजो निकनेम लुबड़ी। ये तो मत भूले। जी बहुत ही खूबसूरत सा कलाम हमने यहाँ पर सुना और उसी के साथ साथ ये वाला लास्ट में रहता था। बिल्कुल जी प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा नजीर कोसो भाई हमें सुन रहे बलोचिस्तान से थैंक यू। फरजाना जमील हमारे साथ ही वालेकुम असलम फरजाना। अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हाणे जेको फरमाइश कंदो उनजो गानो सुभाणे जुमे ते हलायो वेंदो। बिल्कुल सुभाणे जुमो चङो यादि ॾियारायो।

राजा किशोर भा लास्ट में तो बाबा तमा एडा कमेंट करी सडा सफा इमोशनल करी सडो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं आपका भी खुश रहे हमेशा ठीक है और हमारे साथ रहे ओके जी स्मार्ट गोपांग आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं बिल्कुल सही आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती रहिए ताकि आप खूबसूरत हो जाए और खूबसूरत तो आप हैं बस आपकी खूबसूरती को थोड़ा टचअप की जरूरत है तो वो मिल जाएगी जब आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे अच्छा लाली लिस्टर हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ और जी बिल्कुल मिल गया था

फिर मिलते हैं आप लोगों से 5 बजे वाले प्रोग्राम में, ठीक है? तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और 5 बजे हमें ज्वाइन कीजिएगा. और इसी के साथ साथ कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाहें, जिनके फीडबैक दे चुके, जिनके गाने दे चुके, सभी से माजरत करते हैं. सो मोकलानी ना है बाबू सिंह, सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri, neem prickly heat saw. Fakiri, neem
2: prickly heat saw. Naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: कराची में मीडिया से गालाइंदे वरे वजीर मुराद अली शाह चवा ते सिंध असेंबली केतराई भेरा सूबे में नए सूबे जी 100 सैकड़ो मुखालफत करे चुकी है सिस्टम के नाकाम चवंदड़ एक भेरो थर घुमी डिसन थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमाल थन गुर्जे थर में 175 अरब कोयले जा जखीरा मौजूद आहन मैदनी वसीलन सा मालामाल आयूं घणी सलाहतूं अन्या इस्तेमाल नाहन थियूं मैदनी वसीलन जो इस्तेमाल जो सलाहतूं पैदा करनी पवंदियूं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ टिन ॾींहनि जे दौरे ते अॼु सऊदी अरब वेंदो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो ॿिन तरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते में जारी चिकताण ते ॻाल्हियूं थींदियूं पर ॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन नंदरा बि चयो आहे त वज़ीर-ए-आज़म सां गॾु नायब वज़ीर-ए-आज़म एसाक डार ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि गॾु हूंदो सऊदी क़यादत सां मुलाक़ातनि दौरान पाक सऊदी लाॻापन ऐं ख़िते जी सूरतहाल समेत सिफ़ारती कोशिशनि जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो नायब वज़ीर आज़म एसाक डार उहिदनि खां सऊदी अरब पहुतल ईरान ऐं ओमान आबराए हरगुज़ में बहरी जहाज़नि जे हिकु रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो ईरानी परॾेही वज़ारत तस्दीक करे छॾी तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमेरिका मुआहिदे जो गॾियल पधरनामो तयारु करे रहिया आहियूं टीं धुर जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघे थो
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह दहें का शाम पंजे वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-96-8051।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: yapmaze.
1: तब ये पॉसिबल है। सुबह सिंध की असेंबली एक बार नहीं कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं लेकिन कई बार यूनैनिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सुबह सिंध में बनाने की कि तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुजाहिदा नहीं, लोगों को भरोसा है। आप इसको इतना ड्रामेटाइज ना करके लाशें गिर जाएंगे, इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज।
2: सूबा ठाहिण लाइ आइन में तरीक़ो मौजूदु आहे, बहस थी सघे थी, अवाम खे भरोसो आहे। मोहसिन नकवी जे बयान खे बि घणी अहमियत न ॾियणु घुर्जे। सिंध में नओं सूबो न ठहंदो। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली केतिरा ई भेरा सूबे में नए सूबे जे 100% मुखालफ़त करे चुकी आहे। सिस्टम खे नाकाम चवंदड़ हिकु भेरो थर घुमी ॾिसनि। थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमाल थियणु घुर्जे। थर में 175 कोयले जा ज़खीरा मौजूदु आहिनि। मैदनी वसीलनि सां मालामाल आहियूं, घणियूं सलाहियतूं अञा इस्तेमाल नाहे थियूं। मैदनी वसीलनि जो इस्तेमाल जूं सलाहियतूं पैदा करणियूं पवंदियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। ॿिन तरफ़नि लाॻापन समेत खिते में जारी चिकताण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ अतातारण ऐं तारिक फातमी वज़ीर आज़म सां गॾु हूंदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पहिरीं ई सऊदी अरब पहुतलु।

0: ईरान ऐं ओमान आबना हरमुज़ में बहरी जहाज़नि जे हिक रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ईरानी परॾेह वज़ारत तसदीक करे छॾी। तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमेरिका मुआहिदे जो गॾियल पधरनामो तयारु करे रहिया आहिनि। टीं धुर जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघे थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग लाइ हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते अमेरिकी सदर ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेगसेथ ते नाराज़। अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट मूजिब सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान पेट हेगसेथ ते हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रंप ख़बरुनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। कूड़ियूं ख़बरूं पखिड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पज़िशान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे। अमेरिका जे पहिरीं तरजीह ईरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण आहे। तेहरान सां तकरार जे ख़ात्मे लाइ वॉशिंगटन फ़ौजी मुआशी ऐं सफ़ारतकारी समेत सभु रस्ता इख़्तियार कंदो। अमेरिकी नायब सदर जे डी विंस चयो आहे त ईरान में हिकु दुर जंग जो ख़ात्मो ऐं ॿी जंग जारी रखणु चाहे थी। तकरार जो को न को हल निकिरी ईंदो। पाकिस्तान खिते में अमुन जे क़याम लाइ दोस्त मुल्कनि सां गॾिजी कमु जारी रखंदो। आबना हरमुज़ ते अॻभराई सां ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि जो रस्तो हमवार थींदो। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्रा बि चयो आहे त बाबुल मंदब में बहरी जहाज़नि ते हमलनि जी मज़म्मत कयूं था। पाकिस्तान बहरी रस्तनि जे तहफ़ुज़ ऐं सलामती जी हिमायत जारी रखंदो। निज़ाम अमुन फ़ौज का तजवीज़ आई त पाकिस्तान जाइज़ो वठंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जे महफ़ूज़ थाकनि ऐं सहूलतकारीअ जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। ओमान वेझो आबना हरमुज़ में ॿिन ऑयल टैंकर्स में धमाका। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी मूजिबि बहरी जहाज़नि में ॿेड़नि में धमाका ओमान वेझो थिया आहिनि। वधीक तफ़सील नाहिनि मिलिया। यमन में होसिन पारां सऊदी बहरी ॿेड़नि ते हमले बाद बाबुल मंदब में बि बहरी ट्रैफ़िक घटिजी वई। कुझु ई जहाज़नि बाबुल मंदब मां सफ़र कयो। पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में मीरपुर बाद मुज़फ़राबाद रिवीज़न में बि नून लीग ते धांधली करे सीटूं खसण जो इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन जी कारकर्दगीअ ते बि सवाल उथारे छॾिया। नियर बुखारी चयो आहे त मीरपुर रिवीज़न मां 4 सीटूं पीपल्स पार्टीअ खां धांधली करे खसियूं वयूं। राणा सनावला जो बयान धांधलीअ जो सबबु बणियो। पाकिस्तान में कॾहिं बि चूंडूं मरहलेवार नाहिनि थियूं। टर्न आउट बि ॿुधाए रहियो आहे त चूंडनि में धांधली थी आहे। पूंछ रिवीज़न में बि चूंड मरहलेवार कराइणु चाहिनि था। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो जी कराची जे सिटी कोर्ट सां आमद। कराची बार जे सदर आमिर वड़ाइच ऐं ॿियनि सां मुलाक़ात कई। आईजी सिंध चयो त बार बेंच ऐं वकीलनि खे गॾिजी कमु करणो आहे। ग़लति फ़हमियुनि खे कंट्रोल करण जी कोशिश थियणु घुर्जे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ते गॾिजी कमु करणो आहे। आमिर वड़ाइच चयो आहे त आईजी जावेद आलम ओढो जे अचण ते शिकायतूं ख़तमु कयूं आहिनि। हाणे न FIR घुर्जे न वधीक एक्शन।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03195715724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीज़।

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इंडियन जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। बेतरफ़न लाॻापन समेत ख़िते में जारी चिकताण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, ख्वाजा आसिफ फताह तारण ऐं तारिक फातमी वज़ीर आज़म सां गॾु मौजूद। नायब वज़ीर आज़म साॻदार पहिरें ई सऊदी अरब ते में पहुतल।
2: अरे मेरे भाई, किसी की लाशें गिरने नहीं देंगे। आप इतने इतने जज्बाती ना हो, इसको डेमोटाइज ना करें ना। अगर किसी सूबे की असेंबली दो तिहाई अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करे, तब ये पॉसिबल है। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं, कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनैनिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुताबिक, तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुजाहिदा नहीं, लोगों को भरोसा है। आप इसको इतना ड्रामेटाइज ना करके लाशें गिर जाएंगी, इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज।
1: सूबा ठाहिण लाइ आइन में तरीक़ो मौजूदु आहे, बहस थी सघे थो। आवाम खे भरोसो आहे लाश किरण जूं ॻाल्हियूं न कयूं वञनि। मोहसिन नक़वी जे बयान खे बि घणी अहमियत ॾियण न घुर्जे। सिंध में नओं सूबो न ठहंदो। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुआद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली केतिरा ई भेरा सूबे में नए सूबे जी 100% मुखालफ़त करे चुकी आहे। सिस्टम खे नाकाम चवंदड़ हिकु भेरो थर घुमी ॾिसनि। थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमालु थियणु घुर्जे। थर में 175 अरब टन कोयले जा ज़ख़ीरा मौजूदु आहिनि। मादनी वसीलनि सां मालामाल आहियूं। घणियूं सलाहियतूं अञा इस्तेमालु न थियूं आहिनि। मादनी वसीलनि जो इस्तेमाल जूं सलाहियतूं पैदा करणियूं पवंदियूं। ईरान ऐं उमान आबनाए हुर्मुज़ में पहिरीं जहाज़नि जे हिकु रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ईरानी परॾेही वज़ारत तस्दीक करे छॾी। तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमरीका माहिदे जो गॾियल बदनामो तयारु करे रहिया आहियूं। चीन धुर जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघे थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग लाइ हथियारनि जे ज़ख़ीरे में घटिताई थिए। अमरीकी सदर ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेगसेथ खे नाराज़। अमरीकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट मूजिबि सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान पेट हेगसेथ ते हथियारनि जे ज़ख़ीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रंप ख़बरुनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमरीका वटि हथियारनि जो वॾो ज़ख़ीरो मौजूदु आहे। कूड़ियूं ख़बरूं पखेड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पेशिकियान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे। अमरीका जी पहिरीं तर्जी ईरान खे एटमी हथियारनि खां रोकणु आहे। तेहरान सां तकरार जे ख़ात्मे लाइ वाशिंगटन फ़ौजी मुआशी ऐं सिफारतकारी समेत सभु रस्ता अख़्तियार कंदो। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त ईरान में हिकु धुर जंग जो ख़ात्मो ऐं ॿी जंग जारी रखणु चाहे थी। तकरार जो को न को हल निकिरी ईंदो।

0: पाकिस्तान खिते में अमन के क्याम लाए दोस्त मुल्क से गर्जी कम जारी रख आपसे अग पढ़ाई से ईरान अमेरिका गालियन जो रस्तो हमवार पर डेई तर्जुमान तायरुस अंद्राबी है बाबुल मुंतब में पहरी जहाजन से हमलन की मुसम्मत कई था पाकिस्तान पहरी रस्तन के तहफुज ए सलामती की हिमायत जारी रख गजा में अमन फौज बाबत का तजवीज आई तो पाकिस्तान जायजो वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दन के महफूज थाकन ए सहूलतकारी को खात्मो जरूरी है। ओमान वेझो अपना हुर्मुज में बिन आयल टैंकर्स में धमाका बरतानवी मेरी टाइम एजेंसी मूजिब पहरी बेड़न में धमाका ओमान वेझो थे तफसील नाइन मिलिया यमन में हुसिन पारा सऊदी बहरी बेड़न से हमलन बाद बाबुल मुंतब में भी बहरी ट्रैफिक घटी वही कुछ ही जहाजन बाबुल मुंतब में सफर कयो। पीपल्स पार्टी जो आजाद कश्मीर में मीरपुर बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी नून लीग से धांधली कर सीटू खसन जो इल्जाम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से भी सवाल उथारे छाया नैयर बुखारी है मीरपुर डिवीजन में चार सीटू पीपल्स पार्टी का धांधली कर खसी हुई नाना सनावला जो बयान धांधली जो सबब बनो पाकिस्तान में कदें भी चूंडू मरहले वार नाइन थी टर्न आउट भी बुधाई रो चूंडन में धांधली थी है ये पूंछ डिवीजन में भी चूंड मरहले वार कराण चाहन था। आज सिंध जावेद आला मोटो की कराची की सिटी कोर्ट आमद कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच ए बेन से मुलाकात कई आई जी सिंह तो बार बेंच ए वकीलन के गर्जी कम करो है गलत फहमियन के कंट्रोल करने की कोशिश थे घुर्जे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से गर्जी कम करो है आमिर राय है आई जी जावेद आलम ओटो के अचान से शिकायतों खत्म क्यों हाँ न एफ आई आर घुर्जे न एक्शन कम थे या न वकील के थाने में इज्जत मिलन घुर्जे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर KTN News।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301386543।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320472
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड रंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तेहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301399 2836

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अव्हां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल ट्यूब पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ टिन ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। ॿितरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते में जारी ठिकताण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ, तौला तारण ऐं तारिक फातमी वज़ीर आज़म सां गॾु मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पहिरीं सऊदी अरब पहुतल।
1: अरे मेरे भाई, किसी की लाशें गंदी नहीं देंगे। आप इतने जज्बाती ना हो, इसको डेमोटाइज ना करें इतना। अगर किसी सूबे की असेंबली दो तिहाई अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करे, तब ये पॉसिबल है। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं, कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनैनिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुताबिक, तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुजाहिदा नहीं, लोगों को भरोसा है। आप इसको इतना ड्रामेटाइज ना करके लाशें गिर जाएंगे, इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज।
0: सिंध में नए सूबे वारे मामले ते के पी लाश न किरंदा ऐं नई वॾी सिंध में को सूबो ठहंदो। सिंध असेंबली केतिरा ई भेरा नवनि सूबनि ख़िलाफ़ यकराए ठहराउ पास करे चुकी आहे। अवाम खे बि भरोसो आहे हरू भरू मामले खे वधाए पेश न कयो। सिंध जे वॾे वज़ीर बहादुर शाह जो मोहसिन नक़वी जे बयान ते रद अमल। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त पुरमन एहतजाज जो सभिनी खे हक़ आहे, पर रोड बंदि करे अवाम खे परेशान नथो करे सघिजे। सिस्टम खे नाकाम चवंदड़ हिकु भेरो थर घुमी ॾिसनि। थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमालु थियणु घुर्जे। थर में 175 अरब टन कोयले जा ज़खीरा मौजूदु आहिनि। मादनी वसीलनि सां मालामाल आहियूं, घणियूं सलाहियतूं अञा इस्तेमालु न थियूं आहिनि।

ईरान ऐं ओमान अपना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़नि जे हिकु रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ईरानी परेही वज़ारत तसदीक करे छॾी। तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमरीका माहिदे जो गॾियल पतनामो तयारु करे रहिया आहिनि। टीं दौर जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघे थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग लाइ हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते अमरीकी सदर ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेगसेथ ते नाराज़। अमरीकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट मूजिब सदर डोनल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान पेट हेगसेथ ते हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रंप ख़बरनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमरीका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। कूड़ियूं ख़बरूं पखेड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पेशकियान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे। अमेरिका जी पहिरीं तरजीह ईरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण आहे। तेहरान सां तकरार जे ख़ात्मे लाइ वाशिंगटन फ़ौजी माशी ऐं सिफारतकारी समेत सभु रस्ता अख़्तियार कंदो। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त ईरान में हिकु दौर जंग जो ख़ात्मो ऐं ॿी जंग जारी रखणु चाहे थी। तकरार जो को न को हल निकिरी ईंदो। पाकिस्तान खिते में अमन जे क़याम लाइ दोस्त मुल्कनि सां गॾिजी कमु जारी रखंदो। अपना हर मुस्तक़बराई सां ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो रस्तो हमवार थींदो। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी चयो आहे त बाबुल मंदिब में बहरी जहाज़नि ते हमलनि जी मज़म्मत कयूं था। पाकिस्तान बहरी रस्तनि जे तहफ़ुज़ ऐं सलामती जी हिमायत जारी रखंदो। फज़ा में अमन फ़ौज बाबति का तजवीज़ आई त पाकिस्तान जाइज़ो वठंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जी महफ़ूज़ ताक़त ऐं सहूलतकारी जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे।

0: जेकॾहिं इहे तव्हां इस्तेमालु नथा कराए सघो त रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारियो, अव्हांखे इनशा ताला नंढे खे मुकमल तरीक़े सां ट्रीटमेंट ॾींदासीं, इनशा ताला नंढो ठीकु थी वेंदो।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी, मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी अवां सां गॾु आहे। असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सिंध जा मशहूरु मरूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु। डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301 9196 प्रोग्राम में कॉल जी तरफ़ ईंदासीं, ॾिसूं किथां जो कॉलर असां सां गॾु हूंदो। काफ़ी दोस्तनि जूं कॉलूं अचनि पियूं, सभिनी खे ख़ुशि आमदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।
0: क़रीबी डॉक्टर खे ॾेखारे सघो था, वरना रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर रहंदो आहे। या लौंग जो तेल तव्हांखे मिली वञे त उहो जेको असां लॻाए सघो था, उन सां काफ़ी फ़र्क़ु पवंदो। या घर में मिठी सोडा हूंदी आहे उहा लॻायो, इनशा ताला उन सां बि काफ़ी
1: फ़र्क़ु। ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, अस्सलाम वालेकुम। जी दादा, केरु ॻाल्हाए पियो? केरु साहिब पियो ॻाल्हाए? सर साहिब पियो ॻाल्हाए। सर साहिब, साहिब इहो छा पुछंदे डॉक्टर साहिब खां? जिस्म में कमज़ोरी, इन मसले जे लाइ फ़ोन कई। इलाज मौजूदु हलियो आहे डॉक्टर वटि, को मसलो ई कोन्हे को। FM ॿुध, डॉक्टर ॿुधाईंदी। जी सर, ॿुधो FM ॿुधो।
0: साईं बिल्कुलु रूबरू हुजनि, इनशा ताला हुनजी ट्रीटमेंट आहे।
1: सुभाणे आहे सिहत जी ॻाल्हि जी, मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समात में पहुचे पियो। 0301 9196 हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु, ॾिसो किथां जो कॉलर गॾु हूंदो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, मुंहिंजा केरु साहिब पियो ॻाल्हाए? ख़ुशि आमदी चऊं था बुर्दी साहिब खे। छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां मुंहिंजा भाउ? हुआ वार छणी था वञनि, दिमाग़ जी कमज़ोरी
2: आहे।
1: ठीकु आहे, घणी उमिरि
2: आहे?
1: अच्छा, को मसइलो ई कोन्हे को। ॿुधो FM ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो।
0: जी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूदु आहे, अधे खे चवंदासीं रूबरू ॾेखारनि, वरना 7 बादाम रोज़ाना राति जा पाणी में पिसाए रखनि, सुबुह जो नेराणे खाइनि, इनशा ताला काफ़ी फ़र्क़ु पए।
1: थी वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, पहिरियां हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद। थरी रोड मेहरापुर 03003388।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अरे मेरे भाई, किसी की लाशें गिरने नहीं देंगे। आप इतने जज्बाती ना हो, इसको ड्रामेटाइज ना करें इतना। अगर किसी सूबे की असेंबली दो तिहाई अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करे, तब ये पॉसिबल है। सुबह सिंध की असेंबली एक बार नहीं, कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनैनिमसली, यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सुबह सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुजायका नहीं है, लोगों को भरोसा है। आप इसको इतना ड्रामेटाइज ना करें कि लाशें गिर जाएंगी, और ये इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज।
2: सिंध में नए सूबे वारे मामले ते के भी लाश न किरंदा आए नहीं वरी सिंध में को सूबो ठहंदो। सिंध असेंबली केतरा ही भेरा नवन सूबन खिलाफ यकराए ठहराव पास कर चुकी है। अवाम के भी भरोसा है, हरू भरू मामले के बधाए पेश न कयो। सिंध के वे वजीर मुहम्मद अली शाह जो मोहसिन नकवी के बयान ते रद्द अमल। कराची में गालाइंदे वे वजीर पुरमन एहतजाज जो सभी के हक है, पर रोड बंद करे अवाम के परेशान नथो करे सकजे। सिस्टम के नाकाम चवंदड़ एक भेरो थर घुमी दिसन। थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमाल थियण घुर्जे। थर में 175 अरब टन कोयले जा ज़खीरा मौजूद आन। मादनी वसीलन के हवाले से घणियों सलाहियतूँ अ इस्तेमाल न थियूं आन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के बचाव वाले वजीर की क्यादत में आला सतह वफ़्द की मुलाकात। GHQ रावलपिंडी में मुलाकात दौरान गड़ियल दिलचस्पी के मामलन, इलाकई सिक्योरिटी सूरतहाल, बितरफी दिफाई ए सिक्योरिटी सहकार के वधिक हथी डियण के मामलन ते खालन की डे वठ। ISPR मौजिब धुरियन गड़ियल सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुंह डियण लाय अस्करी राबता वधिक मजबूत बनाने की अहमियत ते जोर भरियो। सोमालिया के बचाव वाले वजीर अमन इस्तेकाम के हथी डियण लाय पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत ए हथियारबंद फौज के पेशावराने किरदार के सराहो। फील्ड मार्शल खत्े में जटादार अमन के क्याम लाय हर मुमकिन सहकार जो अजम वरजायो।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ टिनि ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। ॿितरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते में जारी चिकताण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर, ख्वाजा आसिफ अताउल्ला तारण ऐं तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म सां गॾु मौजूदु। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पहिरीं सऊदी अरब पहुतलु।

सिक्योरिटी फोर्सेस जा बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 12 दहशतगर्द मारजी विया आईएसपीआर मुझे भारतीय सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी के खात्मे लाए जारी मुहिम रदुल फितना 3 तहत वाशिक ए मस्तूंग जिले में ऑपरेशन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस 5 अगस्त से वाशिक में कार्रवाई कर 6 दहशतगर्दन के जन्म भेड़ो कयो 6 अगस्त से मस्तूंग में कार्रवाई दौरान 6 दहशतगर्द मारजी विया बिन्हीं जिले में ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दन जा गुच्छा ठिकाणा पिण तबाह किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस ए कानून लागू कदड़ इदारा दहशतगर्दी के खात्मे लाए पुरसम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे ताई कार्रवाई जारी रखी वेंद ईरान ओमान आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाजन के एक रस्ते से इतफाक कर वरतो ईरानी परदेही वजारत तस्दीक कर छी तर्जमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ए अमेरिका माहिदे जो गडियल पतनामो तैयार कर रहा है जी धुर की मुदाखलत से मामलो खराब भी थी सके तो।

दुश्मन अठेतालीह कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहिद ऐं मज़बूत बणायो आहे।

0: अमेरिका जी पहिरीं तर्जी ईरान खे एटमी हथियारनि खां रोकणु आहे। तेहरान सां तकरार जे ख़ात्मे लाइ वॉशिंगटन फौजी माशी ऐं सफ़ातकारी समेत सभु रस्ता अख़्तियार कंदो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

लेजर क्लिनिक लेकर आया है। बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहराब पर, 03003385 69।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड महरा पर राबते जे लाए 0320180003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: बारह दहशतगर्द मारिजी विया। आईएसपीआर मूजिब भारतीय सरप्रस्ती में थींदड़ दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे लाइ जारी मुहिम रदुल फितना टे तहत वाशिक ऐं वस्तोंग ज़िलनि में ऑपरेशन कया विया। सिक्योरिटी फोर्सिस 5 अगस्त ते वाशिक में कार्रवाई करे 6 दहशतगर्दनि खे जनम भेड़ो कयो। 6 अगस्त ते मस्तूंग में कार्रवाई दौरान वधीक 6 दहशतगर्द मारिजी विया। ॿिन्ही ज़िलनि में ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जा गुझा ठिकाणा पिण तबाह कया विया। सिक्योरिटी फोर्सिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारा दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहिनि। दहशतगर्दीअ जे मुकमल ख़ात्मे ताईं कार्रवाइयूं जारी रखियूं वेंदियूं। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सां सोमालिया जे बचाव वारे वज़ीर जी क़यादत में आला सतही वफ़द जी मुलाक़ात। GHQ रावलपिंडी में मुलाक़ात दौरान गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि, इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरतहाल, बितरफ़ी दिफ़ाई ऐं सिक्योरिटी सहकार खे वधीक हथी ॾियण जे मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ISPR मूजिबि धुरियन गॾियल सिक्योरिटी चैलेंजेस खे मुंहुं ॾियण लाइ अस्करी राब्ता वधीक मज़बूत बणण जी अहमियत ते ज़ोर भरियो। सोमालिया जे बचाव वारे वज़ीर अमन ऐं इस्तेहकाम खे हथी ॾियण लाइ पाकिस्तान जी मुस्तक़िल हिमायत ऐं हथियारबंद फ़ौज जे पेशेवराणे किरदार खे साराहियो। फील्ड मार्शल ख़िते में जटादार अमन जे क़याम लाइ हर मुमकिन सहकार जो अज़म मर्जायो। ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब पहुची वियो। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। बितरफ़न लाॻापन समेत ख़िते में जारी ठिकाण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, ख्वाजा आसिफ फताउल्ला तारण ऐं तारिक फातमी बि वज़ीर आज़म सां गॾु पहुता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार अॻे सऊदी पहुतल।
0: आप सुन रहे थे GA FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
5: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ

0: गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान ऐमान अपने हुर्मुज में बहरी जहाजन के एक रस्ते ते तफाक करे वरतो। ईरानी परदेही वजारत तस्दीक करे छी। तर्जुमान इस्माइल वकई चयो है त ईरान ऐ अमेरिका माहिते जो गरियल बदरनामो तैयार करे रहा आहिन। टीं दौरे जी मुदाखलत ते मामलो खराब भी थी सघे थो। ईरान खिलाफ जंग लाए हथियारन के जखीरे में घटताई ते अमरीकी सदर ट्रंप दिफा वाले वजीर पेट हेगसेथ ते नाराज। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट मूजिब सदर डोनल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान पेट हेगसेथ ते हथियारन के जखीरे में घटताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रंप खबरों की तरदीद कदे चयो आहे त अमरीका वट हथियारन जो वडो जखीरो मौजूद आहे। कूड़ियों खबरों पकड़ेदड़न के जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकन दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण की साजिश कई पर नाकाम रहो। जंग ए पाबंदियों भी ईरान के शाम वांगुर झुकाए न सकियूं। ईरानी सदर मसूद पेशिकियान चयो आहे त ईरानी अवाम के हौसले अज़म दुश्मन के नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर भी ईरान के मुतहद ए मजबूत बणायो आहे। अमरीका की पहली तरजीह ईरान के एटमी हथियारों का रोकण है। तेहरान से तकरार के खात्मे लिए वाशिंगटन फौजी मुआशी ए सफारतकारी समेत सब रस्ता अख्तियार कर। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान में एक दौर जंग जो खात्मो ए बी जंग जारी रखन चाहे थी। तकरार जो को न को हल निकरी। पाकिस्तान खिते में अमन के क्याम लाए दोस्त मुल्क से गर्जी कम जारी रखो। अपने हरमुस्ते अगभराई से ईरान अमरीका गल रस्त हमवार परेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी है बाबुल मंदिब में बहरी जहाजन से हमलन की मुसम्मत क्यों था। पाकिस्तानी बहरी रस्तन के तहफुज ए सलामती की हिमायत जारी रखो। फजा में अमन फौज बाबत का तजवीज आई तो पाकिस्तान जायजो वो। अफगानिस्तान में दहशतगर्द के महफूज थाकन ए सहूलतकारी जो खात्मो जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के बचाव वाले वजीर की क्यादत में आला सतह वफद की मुलाकात। जीएचक्यू रावलपिंडी मुलाकात दौरान गरियल दिलचस्पी के मामलन इलाकई सिक्योरिटी सूरत हाल वितरती दिफाई ए सिक्योरिटी सहकार के हथी दियण के मामलन के ख्याल की डे ISPR मूजिब दुरियन गरियल सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुंह दियण लाय अस्करी राबता मजबूत बनाने की अहमियत से जोर भर। सोमालिया के बचाव वाले वजीर अमन इस्तकाम के हथी दियण लाय पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत ए हथियारबंद फौज के पेशेवराने किरदार के सहारा। फील्ड मार्शल खिते में जटादार अमन के क्याम लाय हर मुमकिन सहकार जो अजम वरजाया।

0: आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372, 0242-460100।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद

0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सऊदी अरब के टिन ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते जद्दा पहुची वियो। मके जे नायब गवर्नर शहज़ादे सऊद बिन मशाल ऐं ॿियनि अमलदारनि संदसि आजियां कई। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात कंदो। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में भाइराणनि लाॻापनि ऐं भाईवारी खे वधीक मज़बूत बणाइण समेत ख़िते जी सूरतयाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वेंदी। शहबाज़ शरीफ दौरे दौरान उमिरि जी शहादत माणींदो ऐं मदीना मुनवरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसलम जे रोज़े ते हाज़िरी पिण भरींदो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर, वफ़ाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ अताउल्ला तारण ऐं ख़ासि मददगार तारिक फातमी बि वज़ीर आज़म सां गॾु सऊदी अरब पहुता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अॻे सऊदीया में मौजूदु।
1: किसी की लाशें गिरने नहीं देंगे, आप इतने इतने जज्बाती ना हो, इसको ड्रामेटाइज ना करें इतना। अगर किसी सूबे की असेंबली दो तिहाई अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को करें, तब ये पॉसिबल है। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं, कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनैनिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुजायका नहीं है, लोगों को भरोसा है। आप इसको इतना ड्रामेटाइज ना करें कि लाशें गिर जाएंगी, और ये इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज।
0: सिंध में नए सूबे वारे मामले ते के पी लाश न किरंदा ऐं नई वरी सिंध में को सूबो ठहंदो। सिंध असेंबली केतिरा ई भेरा नवनि सूबनि ख़िलाफ़ यकराए ठहराउ पास करे चुकी आहे। عوام کے بھی بھروسو ہے ہرو بھرو معاملے کے ودھائے پیش نہ کیو۔ سندھ کے وڈے وزیر بہاد علی شاہ جو محسن نقوی کے بیان تے رتے پر کراچی میں گلائندے وڈے وزیر سے تا پورا من احتجاج جو سبنی کے حق ہے، پر روڈ بند کرے عوام کے پریشان نہ تو کرے سکجے۔ سسٹم کے ناکام چوندڑ ایک ویرو تھر گھومی دسن، تھر جو ماڈل سمورے ملک میں استعمال کرن کرجے۔ تھر میں 175 ارب ٹن کوئلے جا ذخیرہ موجود ہیں، مادنی وسیلن کے حوالے سے گھنی صلاحیتوں یہاں استعمال نہ تھیں ہیں۔
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।